0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: This is something special.

अगर आप एक लड़की को हंसा सकते हो देन यू कैन किस हर. दिस इज एक्चुअली ट्रू. आई वॉज रीडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग पीस, एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने लिखा कि हर औरत के लिए इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमारा एवोल्यूशनरी इम्पल्स ऐसा है, वी लुक फॉर मैन हु आर इंटेलिजेंट. और आप एक इंटेलिजेंट आदमी को कैसे जज करोगे? आई मीन यू कॉन्ट स्पेंड लाइक 5-6 लॉन्ग डिबेटिंग कॉन्वर्सेशन विद अ गाय टू फिगर आउट कि वो स्मार्ट है या नहीं. तो ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू एग्जिबिट योर इंटेलिजेंस एज अ मैन. तो हिंदी में दैट्स व्हाई आई गेस दे से कि हंसी तो फंसी, क्योंकि इफ यू कैन मेक हर लाफ यू कैन श्योरली किस हर. एंड मेरे केस में इट्स बीन ट्रू एवरी सिंगल टाइम. आई हैव नेवर किस्ड अ मैन जिसने उससे पहले मुझे हंसाया ना हो. एंड अभी भी व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक ऑल द मेन आई हैव डेटेड एक्सेप्ट वन या टू, बाकी के सब सुपर इंटेलिजेंट मैन. ऑफकोर्स वंस इन अ व्हाइल यू हैव टू डेट टोड्स एंड मेंडक्स एंड ऑल ऑफ दैट, कबूतर्स ऑल्सो. अगर आपने भी ऐसे ही थोड़े से लूजर्स को डेट किया है मेरी तरह एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू आर एट इट, अदर दैन इंटेलिजेंस व्हाट एल्स डू यू लुक फॉर इन अ मैन? गो अहेड एंड टेल मी. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स

0: आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके चीज केक में कुत्ते के बिस्किट बनाकर दिए एंड आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला, आपको शर्म नहीं आई?
1: The secret box.
0: जो भी आपका सीक्रेट कन्फेशन होता है ना, उसे मैं जब रोशिफाई कर देती हूँ तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है. और अगर आप अपनी गंदी गंदी हरकतों को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय बेब.
2: हाय,
0: हाउ आर यू?
2: आई एम डूइंग फाइन नाउ.
0: इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? यू आर लाइक, हाय रोशी, मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, हुआ क्या?
2: एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने ये चीज कभी आज तक किसी से कन्फेस नहीं की. तो
0: I totally get it. But you know what? You can like totally tell me your confession. और मैं आपको judge भी नहीं करूँगी and at the end of it आपको roastify भी कर दूँगी, ठीक है?
2: I know. Okay. I just don't want to get judged because मैंने मेरा एक boyfriend था, ex-boyfriend actually. तो मैंने उसको, हमने काफी time date किया और फिर मुझे पता चला वो एक नंबर का बीप था और उसने मुझे चीट किया काफी सारी लड़कियों के साथ. तो मैंने उसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को सिड्यूस किया और हम दोनों ऐसे एक कैजुअल डेट पे भी मिले थे और उसको इवेंचुअली ये चीज पता चली कि उसकी सिस्टर का हार्ट ब्रेक. तो इसलिए
0: मैं आई एम सो स्पीचलेस. ये आपके दिमाग में आया कैसे? कौन सी वाहियात गंदी पिक्चर देख रहे थे आप, जापानीज, कोरियन या फिर यूरोपियन? क्योंकि इंडिया में तो किसी का दिमाग ऐसे नहीं चलता है ब्रो.
2: मैं एक्चुअली उसके सिस्टर को और उसके बॉयफ्रेंड को दोनों को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे. तो वहां से मुझे लगा कि मुझे इसको ऐसे पेन देना है जिसे याद रखे लाइफ तक.
0: ब्रो देख, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्टेट हूँ और सिंगल हूँ, ताकि मुझे कहीं तुम मिल भी गई तो हम कभी डेट नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा रिवेंज तो मैं हैंडल नहीं कर सकूंगी. ऐसे स्मोकिंग हॉट रिवेंज के लिए आपको रोशिफिकेशन चाहिए. आपकी सोए हुए कॉन्शियस, क्योंकि आप गिल्टी तो फील नहीं कर रहे हो, तो सोए हुए गिल्ट कॉन्शियस के लिए श्योर यू हैव इट,
3: यू've been roshified.
0: बेबी जो तुमने मेरे को जूसी कन्फेशन बताई है ना, सीरियसली किसी और को मत बताना, ठीक है?
2: नहीं बताऊंगी.
0: सीरियसली मत बताई हो. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई कन्फेशन है, ऐसे वाला, दिस हॉट बर्निंग कन्फेशन, आई डू वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुनाती हूँ जिन्हें मुझे लगता है वो मेरे पोटेंशियल लवर्स हो सकते हैं, एंड इफ दे डोंट गेट एक्साइटेड विद द स्टोरी देन आई नो दैट दे आर नॉट फॉर मी। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, एक सरियलिस्ट पेंटर की जिनका नाम है सैल्वाडोर डाली। ये एक स्पैनिश आर्टिस्ट हैं, थे एक्चुअली, ही पास्ड अवे ऑन द 23rd January 1989। तो अब आपको टाइम पीरियड भी समझ आ गया ये कब हो रहा था। उस समय सैल्वाडोर के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक पोएट और एक आर्टिस्ट भी थे, इनका नाम लॉर्का था। और लॉर्का अपनी वाइफ और बेटे के साथ सैल्वाडोर डाली के साथ समर वेकेशन स्पेंड करने उनके स्पैनिश घर में आए। अब 2 महीने के अंदर अंदर सैल्वाडोर को लॉर्का की बीवी गाला से बेहद मोहब्बत हो गई। ये बात उन्होंने गाला से उन 2 महीने में तो नहीं कही, लेकिन व्हेन दे वर ऑल लीविंग अपने घर वापस जाने के लिए, तो गाला पूरे घर में डाली को ढूंढती रही और वो उन्हें नहीं मिले। फाइनली शी वेंट लुकिंग फॉर हिम इन द स्टूडियो जहां वो पेंटिंग करते थे, और वहां स्टूडियो के कोने में बिल्कुल अपने चेहरे को दीवार की तरफ किए वो एक चेयर पर बैठे थे। ही हैड पेंटेड हिमसेल्फ इंटायरली ब्लू और उनके कान में एक मुरझाया हुआ फूल था। तो गाला ने जब उन्हें देखकर ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सैल्वाडोर, हम लोग जाने वाले हैं। ही लुक्ड इट होर मुड़कर एंड सेड कि अगर तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरी हालत आज भी ऐसी है और जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। तो अगर सच में तू मुझे खुश देखना चाहती है और कहीं तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है तो प्लीज रुक जा। एंड गाला ने उसी वक्त जाकर लॉर्का से कहा कि यार आई नो कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ एंड आई लव आवर चाइल्ड, लेकिन मैं डाली को इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँ। एंड इवेंचुअली गाला एंड डाली बिकेम लवर्स फॉर लाइफ। इनफैक्ट गाला जब पास्ट अवे, क्योंकि वो डाली से काफ़ी बड़ी थी, तो वो सैल्वाडोर डाली की बाहों में ही मरी थी। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप एक ऐसी लव स्टोरी जानते हो विच इज एज ब्यूटीफुल एज दिस वन? अगर हाँ, देन हिट मी अप विद योर नंबर एंड आई विल कॉल यू राइट अवे। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू। कहीं मत जाना जाना, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो आज भी ऐसी हूँ, जिंदगी भर ऐसी रहूंगी, उदास और अकेली तुम्हारे बिना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुस खुस खुस खुस खुस ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओए खुस खुस खुस खुस खुस ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत with Move Body on गाना नंबर 10। At RJ Kanika on Instagram पर कोई गाना शेयर करना, कोई बातें बतानी हो, बिंदास hit me up। Stay tuned for the full countdown। This is Move Body playing right next for you only on गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
0: Number 10।

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं. ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: आई सेड व्हाट आई सेड. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. दिस शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग. पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं. किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं. कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं. ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं. गाने का नाम है तारे बाय फरक. इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वॉन्ट यू टू थिंक समथिंग. सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया. जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है, उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है. एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं. हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है. कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे. अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया. लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेस हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने. तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह, जो अब इतना यूज्ड टू हो गया अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है. इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है. और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा. पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए. आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे. It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: घर छूटा है जब से कंबखत कोई आसराना है, ये कागज कांपता जब होते दिल के घाव ताजा है।
1: के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: कैश किंग की आवाज में गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौर की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील लाइक ये कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई रिमेंबर मेनी कॉन्वर्जेशंस विद बोथ ऑफ देम, एंड वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है। दे जस्ट मेक द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद हैं, एंड उनके कई सारे गाने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं। सो येस, दे आर ट्रेंड सेटर्स। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर, मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indi Top 10 की तरफ से super mad respect to you guys. अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है बेवजह, Khosla Raghu की नई album का पहला गाना। It's playing right next for you only on Gaana Indi Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.

सा रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे करेगा इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज अनीश सरकार, हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं, और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है, आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोज रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था, धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लकी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। पत्नी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वॉज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे, एट आरजे कनिका पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्का हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी, हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी का साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7। एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Her Friday, Bollywood ke liye is a new start. एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। अगस्त शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम।
0: नंबर 20।

0: a banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. और number 19 पर डेब्यू कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक। इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।
1: नंबर 19।

0: If you wanna play, fall in line, little boy. Cause you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Cause you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an art like mere senior hai, but he's the only one I feel. And I'm har jagah aisa bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance mein main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आरापन नंबर।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 6।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है उसके वो पहले कुछ सेकंड्स, जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था धातु है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा, वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: Mirchi, it's hot.
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: करनी थी।
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की।
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आता है।

लाइफ का बिगेस्ट स्कैम पता क्या है? अलार्म हम सुबह 6 बजे का लगाते हैं और उठते 6:30 बजे है, और फिर ब्लेम करते हैं स्ट्रेस को। यस, वी आर ह्यूमंस। गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट देसी ह्यूमन। कॉफी हाथ में है या सिर्फ मीटिंग का स्ट्रेस है साथ में? वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला और अगले कुछ घंटों के लिए ऑफिस, ट्रैफिक, लॉन्ड्री, घर के काम, ब्रेकफास्ट, सब कुछ साथ साथ में करना है। वैसे तुम्हारा दिन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं, मेरा दिन काफी देर पहले शुरू हो चुका है। अब फिलहाल अगर तुम कम्यूट कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर अभी तक नींद ही खुली नहीं है तुम्हारी, मैं कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। और मेरे साथ होगा बॉलीवुड, थोड़ा सा गॉसिप, थोड़ी सी मस्ती, फील गुड अमेजिंग बातें, एंड साथ साथ में अराउंड वर्ल्ड की अपडेट्स, सम रैंडम फैक्ट्स एंड मिर्चीदार बैंगर्स एंड ऑब्वियसली मिर्ची की वाइब्स। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ फटाक से मुझे फॉलो कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप नंबर है 9033647244। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो एक मिनट के लिए रिवाइंड मारकर पता करते हैं कि आज का दिन क्यों खास था हिस्ट्री में। सबसे पहले 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को अपनी लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी समझाई थी। और फिर 1811 में वेनेजुएला स्पेन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके साउथ अमेरिका का ट्रेंड सेटर बन गया। 1852 में फ्रीडरिक डगलस ने एक पावरफुल स्पीच दी जो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के लिए आज भी याद की जाती है। एंड फैशन लवर्स 1946 में पेरिस में बिकिनी ने अपना डेब्यू किया, मतलब कि एक ऐसा आउटफिट जो इतनी हेडलाइंस बनाकर गया है। 1954 में एल्विस प्रेसली ने अपना पहला कमर्शियल सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और रॉक एंड रोल ने बोला था माइक चेक आई एम हियर। साइंस ने 1996 में हिस्ट्री बना दी थी जब डॉली द शीप दुनिया का पहला क्लोन्ड मैमल पैदा हुआ था। और ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन 1994 में आज के दिन अमेजोन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। हाँ जी, तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कुछ दिनों बाद रात को 2 बजे तक तुम टिश्यू पेपर और एयर फ्रायर सब कुछ वहां से ऑर्डर कर रहे होगे। वैसे अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में तो मुझे बता सकते हो। तो मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर है। देखो बड़ा आसान है मुझे ढूंढना, मिर्ची पी टाइप करोगे तो ही आ जाएगा। पर एक्स से जाओ, MIRCHIPRIS टाइप करो, मुझे ढूंढो, मुझे फॉलो करो, मुझसे बातें करो। और व्हाट्सएप पर भी नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.
1: New York में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: the Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

कि तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी टेम्परेचर है 68 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। स्काई जो है वो प्रिटी क्लाउडी है, लेकिन फील हो रहा है टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। मतलब वेदर आज कह रहा है मैं कूल हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 67 से 84 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में, और फील्स लाइक टेम्परेचर होगा 67 से 85 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। यानी कि आज का तापमान और फील्स लाइक तापमान सिमिलर ही है। गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज जीरो रेन, लेकिन अगले 24 आवर्स में अराउंड 3 मिलीमीटर्स की बारिश, लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। तो अम्ब्रेला को कम्प्लीटली इग्नोर करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं भी लेकर गए तो इतना बवाल नहीं मचने वाला है लाइफ में। और अगर आज का वेदर कल से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। कल का हाई था 85 डिग्रीज फारेनहाइट तक, आज 84 डिग्रीज फारेनहाइट तक जाने वाला है। और तुम अगर बाहर जाने वाले हो तो SPF 50++++ लगाकर ही जाना, एंड मेरे दोस्त लेयर के प्लेयर बनकर ही जाना। एंड ऑफ कोर्स मिर्ची की वाइब्स अपने साथ रखो और अपनी वाटर बॉटल भी कैरी करना। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आई एम गोना प्ले प्लेंटी ऑफ मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। Mirchi, it's

आप सत श्री अकाल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवा का ट्री। यहाँ पर मिलती है तुम्हें अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले रशिया ने अपना पहला MC-21 पैसेंजर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाई किया है, जिसे रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स के साथ डेवलप किया गया है। प्लेन ने लगभग 1 hour and 23 minutes की टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है, करीब 600 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड और 6000 मीटर्स का एल्टीट्यूड टच किया है। एविएशन गीक्स के लिए दिस इज डेफिनेटली वन टू वॉच। एंड नंबर टू पर 20-year-old मोरक्कन फुटबॉलर फतेन बेन अमार एल अजीजी की स्पेन के सेउटा पहुंचने की कोशिश के दौरान ड्राउनिंग से डेथ हो गई। उनके परिवार के मुताबिक उनका शेंगेन वीजा उसी दिन अप्रूव हुआ था। उनके फुटबॉल क्लब ने कहा कि अनसेफ माइग्रेशन ने ड्रीम्स इनटू नाइटमेयर्स बदल दिए। एंड लास्टली टीम इंडिया के विकेट कीपर बैटर ईशान किशन फिलहाल क्रिकेट ब्रेक के बीच में अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पटना ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के रोल में वापस ड्यूटी ज्वाइन करके। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी के लिए मिर्ची दार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाले हूँ। एंड यू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की गॉसिप जो है ना वो एक वेडिंग के मंडप से आई है। एक जेंजी कपल है जिनकी पर्पल हल्दी सेरेमनी इंटरनेट पर फुल ऑन वायरल हो गई है। हाँ जी, ट्रेडिशनल पीली हल्दी की जगह इन्होंने लैवेंडर कलर पेस्ट यूज किया है और सोशल मीडिया ने तुरंत अपनी जूरी बिठा दी है। कुछ लोगों ने मजाक में कपल को थानोस कपल भी कह दिया है और दूसरी साइड बोल रही है इट्स क्लासी, एस्थेटिक एंड बिल्कुल ही हटके है। सच बताऊं तो इंडियन वेडिंग्स में एक रूल तो पक्का है, शादी कपल की होती है लेकिन ओपिनियंस पूरे खानदान और पूरे इंटरनेट के होते हैं। वैसे तुम टीम क्लासिक येलो हल्दी हो या फिर टीम पर्पल वाइब्स, जो भी हो ये याद रखना कि शादी में कलर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुश रहना और जिससे शादी कर रहे हो उससे प्यार करना। और शादी के सीजन की बात चली रही है तो क्यों ना तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, जहां पे तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। वाओ। एंड अगर तुम्हारे पास 18 कैरेट्स या उससे अबव का पुराना गोल्ड रखा है जो तुम्हारी दादी, चाची, मामी, ताई किसी ने भी तुम्हें दिया हो या तुमने खुद ने ही लिया हो, उसे एक्सचेंज करा सकते हो जाकर तनिष्क पर एट 0% डिडक्शन। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड एंड कीप लिसनिंग टू मिर्ची फॉर सच अमेजिंग सेल्स एंड ऑफर्स के अपडेट। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी फिलहाल चलाते हैं मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय बर्थडे सुपरस्टार. अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले एक जायंट मिर्ची स्टाइल हग एंड ढेर सारी गुड वाइब्स. मैं तुम्हारी कॉफी कभी ठंडी ना हो, जूम मीटिंग्स जल्दी खत्म हो जाए और घर से आने वाले लड्डूज जो है ना उनकी कैलोरीज काउंट ही ना हो. और देखते हैं आज तुम किन फेमस लोगों के साथ अपना स्पेशल डे शेयर कर रहे हो. आज के बर्थडे सेलिब्रिटीज में सबसे पहले है द वेरी चार्मिंग काजोल एंड द वेरी बबली जूनेलिया डिसोजा. देन वी गॉट Grey's Anatomy से जेसी विलियम्स, एक्ट्रेस एंड सिंगर ओलिविया होल्ट एंड द ब्रेडी बंच फेम मॉरीन मैकॉर्मिक. साथ में एनबीए लेजेंड पैट्रिक यूइंग, बास्केटबॉल सेंसेशन एंटनी एडवर्ड्स, स्पेन के फुटबॉल वंडर किड गावी, ऑल्टरनेटिव रॉक स्टार यंग ब्लड एंड रॉक गिटारिस्ट पैट स्मियर. और आज हम याद करते हैं उन दो लेजेंड्स को जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आज के दिन है. सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले मून पर कदम रखा. और साथ में फ्रेंच ऑथर गी डेमोपासो जिनकी शॉर्ट स्टोरीज आज भी लिटरेचर लवर्स की फेवरेट हैं. तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो ये याद रखो तुम सिर्फ एक साल बड़े नहीं हुए हो बल्कि ऑफिशियली और एक्सपीरियंस्ड और ऑसम और इनक्रेडिबल हो चुके हो. बस बैक पेन का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी तो तुम रॉक स्टार हो. और अगर तुम अपने शाउट आउट भेजना चाहते हो मुझे तो मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो, एंडिंग द सेकेंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स विद अ बैंग, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाली है गोल्ड रेट अपडेट। मेरा नाम है प्रिसला
1: राज। विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,020, $4,020 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्राउंस पीक टच कर चुका है। आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्राउंस डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट विद मी प्रिसला। ऑफ कोर्स फॉलो मी इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। For more such updates, stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है मिर्ची आवर का 3 का। यहाँ पर हम अपडेट्स सुनेंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग एडिशनल फीस ऑन H-1B एंड L-1 वीजा extensions. सिंस इंडियंस अकाउंट फॉर अ लार्ज majority ऑफ H-1B extension applications, दे कुड बी द ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड इफ द प्रपोजल मूव्स फॉरवर्ड। रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट द एडिशनल फीस वुड बी पेड बाय एम्प्लॉयर्स। फिलहाल इट्स अ प्रपोजल बींग रिपोर्टेड, सो वील कीप एन आई ऑन हाउ इट डिवेलप्स। नंबर 2 पर पाकिस्तान के बॉक्सर कुदरतुल्ला रिपोर्टेडली ग्लासगांव में टीम होटल से लापता हो गए। जब नेशनल कंटिंजेंट वापस घर लौटने की तैयारी कर रहा था, ऑफिशियल्स के मुताबिक उनका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट टीम मैनेजर के पास ही था। अथॉरिटीज इस मैटर की जांच कर रही हैं। एंड लास्टली, साउथ कोरिया में 8 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है आफ्टर अथॉरिटीज अलेज्ड दैट दे एंटर्ड ओसान एयरबेस विदाउट ऑथराइजेशन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट व्हाइल शाउटिंग एंटी यूएस स्लोगन्स। स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से जुड़े इशू पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अथॉरिटीज फिलहाल इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू राशि ज़ोन। यहाँ पर हम स्टार्स की बातें करते हैं, वो स्टार्स नहीं जो बॉलीवुड में होते, वो स्टार्स जो तुम्हारे हाथों में।
1: मिर्ची राशि ज़ोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, जो काम सिर्फ बजट की वजह से होल्ड पर था उसे स्टार्ट कर दो। स्टार्स कह रहे हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज किसी और का ड्रामा तुम्हारे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पार्ट मत बनाओ। स्माइल करो, पॉपकॉर्न इमेजिनरी ही सही, लेकिन लाइफ एंजॉय जरूर करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 8। जेमिनी यानी मिथुन राशि, ओवर थिंकिंग को आज अनपेड इंटर्नशिप पर भेज दो, स्काई लिटरली नहीं गिरने वाला है, रिलैक्स। लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 29। कैंसर यानी कर्क राशि, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आज घर फैमिली और अपने सर्कल पे फोकस करो, वही सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा तुम्हारी लाइफ में। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, आज कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा सुपर पावर है, एम हाई क्योंकि लायन परमिशन नहीं मांगता है, प्रेजेंस दिखाता है। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, जो टेंशन तुम इमेजिन कर रहे हो, चांसेस हैं कि वो सिर्फ इमेजिनेशन ही निकलने वाला है, डीप ब्रेथ लो, सब मैनेजेबल होगा। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज राशि जोन नंबर 1। अगर तुम्हारी राशि अभी बाकी है, डोंट गो एनीवेयर, और डेली मिर्ची वाइब्स के लिए फॉलो करो मिर्ची प्रिस को ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड राइट नाउ मिर्ची दैट बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हैं हम राशि जोन का पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्मॉल वरीज को जूम आउट कर दो, बिग पिक्चर ब्यूटीफुल लग रहा है ना, और गुड वाइब्स भी लाइन में है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 24। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हर गोल एग्जैक्टली वैसे कंप्लीट नहीं होता है जैसे प्लान किया हो, एडजस्टमेंट फेलियर नहीं होता है बल्कि स्मार्टनेस होती है। लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 41। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जो बर्डन कल माउंटेन लग रहा था आज मोलहिल लगेगा, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 13। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, किसी अपने को ऑनेस्ट एडवाइस की जरूरत है, आज दिल से बोलो लेक्चर मोड से नहीं। लकी कलर फॉर यू इज स्लेट कलर एंड लकी नंबर इज 27। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बैलेंस ही आज का मैजिक वर्ड है, ना ओवर वर्क ना ओवर चिल, टीम वर्क में थोड़ा सा पेशेंस भी एड कर देना। लकी कलर इज इंडिगो, लकी नंबर इज 35। पाइसीज यानी कि मेन राशि, क्लोजेट हो या लाइफ हो, जो काम का नहीं है उसे गुड बाय बोल दो ना, स्पेस बनेगा तो अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी लाइफ में। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 19। ओह दैट राइम्ड। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना है तो जाओ इंस्टाग्राम और एक्सपर्ट ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

बस आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का प्लेलिस्ट यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। मैं यानी कि प्रिसला जा रही हूँ यहाँ से टाटा बाय बाय बोलकर, लेकिन जाने के पहले तुम्हें कुछ बताकर जाती हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम हॉलीवुड, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पे लिटरली वेब फेंक दिया है, मतलब अपने जाल में ऑडियंस को फंसा लिया है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में ही $1 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इमेजिन मेकिंग इट द सेकेंड फास्टेस्ट मूवी एवर टू हिट दैट माइलस्टोन। नंबर वन पर अभी भी एवेंजर्स का एंड गेम है, लेकिन पीटर पार्कर ने भी बोल दिया है फ्रेंडली नेबरहुड, हाँ नहीं भाई मैं ग्लोबल सुपरस्टार हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पाइडरमैन की लाइफ देखकर लगता है ना, ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल लाइफ, सुपर हीरो हो या देसी अडल्ट हो, बैलेंसिंग एक्ट तो सबको करना पड़ता है, राइट? और चाहे लाइफ एक मकड़ी के जाले से ही क्यों ना अटकी पड़ी हो, ओके आई नो दैट्स अ बैड जोक, तो इसी वजह से मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी पार्ट ऑफ योर कम्यूट, योर किचन प्लेलिस्ट, या फिर तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम, या फिर डेस्क, या फिर तुम्हारे घर में किसी भी कोने में बैठ के तुमने अगर मुझे सुना है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कल फिर से मिलेंगे नए गाने, नए स्टोरीज और नई अपडेट्स लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम है प्रिसला, याद रखना, और ये भी याद रखना कि मुझे जाकर सोशल मीडिया पर फॉलो करना है। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। इंस्टाग्राम और एक्स दोनों पर ही मैं उपलब्ध हूँ, और साथ साथ में व्हाट्सएप पर भी 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रात में कपड़े प्रेस करके, बैग जमा के, सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के, पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं, वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। सो जो कहाँ की चीज कहाँ जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। हाँ ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी। हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था, तब बड़ा जोर आता था। लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार। हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी। टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार। और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे। बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। On Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Dinner,

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार। मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती हैं, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं, और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एन्जाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान। दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून्ड रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नो एंट्री, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो नो एंट्री था लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जगल किया। मतलब कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इनफैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो है वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना।

म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot. Sara zamana, Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में है और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक, एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.
2: तुझे

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विथ राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूं श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा के डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहाँ बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मॉर्निंग्स पर आप हूँ श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: ये गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार कभी कभी लगता है कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ के पहाड़ों में अपना एक कैफे खोल लो।
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। हेलो जी, हाय बापू शाय। और अचानक से कैफे की बात इसलिए आ रही है दिमाग में बिकॉज आई एम करंटली वॉचिंग मुसाफिर कैफे ऑन नेटफ्लिक्स एंड लिटरली लविंग इट टू द कोर। अभी मैं थर्ड एपिसोड पे पहुंची हूँ। बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं मेरे फॉर द कैरेक्टर्स दैट आर देयर, बट लेट मी टेल यू, इस सीरीज में विक्रांत मस्सी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रहे हैं एंड दे आर डूइंग व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ओवर द टॉप एक्टिंग की है, नहीं नहीं, इतनी जेन्युइन एक्टिंग की है कि आपको लगेगा कि अरे इस कैरेक्टर को तो मैं जानता हूँ अपनी जिंदगी में। वैसे आज मेरे शो पे ना बहुत स्पेशल कुछ होने वाला है। इसी सीरीज यानी मुसाफिर कैफे की स्टार कास्ट होगी मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची ऑन माय शो। वैसे इस कॉन्वर्सेशन के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान्ड है फॉर द डे, सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड। इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: तो सारा मेरा उप्स।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट,
2: मिर्ची इट्स हॉट।
3: अकड़ी पकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का।

0: रेडियो और गो रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।